एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे। एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुंचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटिया मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुए और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रहे। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुए। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे, पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहां से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल ना कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गए।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाना।

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी वर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने, तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले। वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौर गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, SD बर्मन, S मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश किया आरजे किन्नी ने और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है, कार्यक्रम रंगमंच की ओर में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर।

जाने मन क्या किसी इंसान की खामोशी में पूरी एक सदी का दर्द सुना जा सकता है? क्या किसी की आंखों का खालीपन इतना भारी हो सकता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए? नमस्कार, मैं मानव मेहरा, द एक्टर्स आई के एपिसोड 6 में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक्टिंग के सफर में आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां व्याकरण यानी कि ग्रामर खत्म हो जाता है और सिर्फ जज्बात बसते हैं। आज की मास्टर क्लास सिनेमा के इतिहास की उस मल्लिका के नाम है जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन कहती है, लेकिन जो असल में अभिनय की देवी थी, मीना कुमारी जी। और आज हम उनके जिस किरदार को समझने का प्रयास करेंगे वो है 1962 की कालजयी फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम की छोटी बहू। एक एक्टिंग स्टूडेंट के तौर पर जब आप छोटी बहू को स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक अमीर जमींदारनी, एक शराबी औरत या एक मजबूर पत्नी? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक सोने के पिंजड़े में तड़पती हुई एक खूबसूरत मौत है। आइए मीना जी के अभिनय की उन परतों को यानी कि लेयर्स को खोलते हैं जो इस परफॉर्मेंस को एक टेक्स्ट बुक बना देती है। पहली मास्टर क्लास, नशे की एक्टिंग। इसे एक्टिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल क्राफ्ट माना जाता है। अक्सर नए एक्टर्स नशे को लाउड कर देते हैं, वो बेवजह लड़खड़ाते हैं, जोर से हंसते हैं, शब्दों को चबाते हैं, लेकिन मीना जी की एक्टिंग को डिकोड कीजिए। छोटी बहू मदिरा यानी कि शराब शौक से नहीं पी रही, वो उसे जहर की तरह पी रही सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति उस रात कोठे पर ना जा पाए। यहां मंशा फिजिकल नहीं, इमोशनल है। मीना जी की आंखों की पुतलियों को ध्यान से देखिए। शराब पीने के बाद उनकी पलकें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपनी आंखें चौड़ी करके खोलने की कोशिश करती हैं। वो अपने शरीर के ढीलेपन को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। असली नशे की एक्टिंग यही है। अ ड्रंकन पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट सोबर, यानी कि एक नशे में धुत इंसान हमेशा होश में दिखने की कोशिश करता है। नहीं, वो अपने साड़ी का पल्लू बार बार संभालती है ये जताने के लिए कि उनका खुद पर काबू है। ये जो कंट्रोल खोने और उसे वापस पाने की जद्दोजहद है, यही महान अभिनय है। दूसरी बारी, जिसे हम कहते हैं प्रॉप और कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल। एक सीन है जहां छोटी बहू पूरे 16 श्रृंगार में बैठी है। भारी बनारसी साड़ी, मांग में चौड़ा सिंदूर, गले में भारी हार, लेकिन मीना जी के चलने और बैठने के अंदाज को ऑब्जर्व कीजिए। वो उन गहनों को अपनी ताकत की तरह नहीं पहनती हैं, वो उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों की तरह पहनती हैं। जब वो अपना भारी हार छूती हैं, तो उनके हाथ में एक अजीब सी थकावट होती है। उनका हर जेवर बस खाली हवेली में उनकी घुटन को बढ़ा रहा है। एक एक्टर को यह सीखना चाहिए कि आपका कॉस्ट्यूम सिर्फ पहनने के लिए नहीं होता है, वो आपके किरदार की साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। क्या आपके कपड़े आपको आजादी दे रहे हैं या आपको कैद कर रहे हैं? अब ध्यान देते हैं तीसरी लेकिन सबसे अहम बात पर, और वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। मीना जी की आवाज में कुदरती तौर पर एक ट्रेजेडी थी, लेकिन छोटी बहू के किरदार में उन्होंने अपनी आवाज को गले से नहीं बल्कि अपने सीने से यानी कि चेस्ट रेजोनेंस
अपनी नाभि से निकाला है। जब वो भूतनाथ से पूछती हैं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं भूतनाथ, इस डायलॉग में जो क्रैक है, जो गले का रुंधना है, वो तकनीकी नहीं, वो सेंस मेमोरी है। शब्द बहुत धीरे से बोले गए हैं, फुसफुसाहट की तरह, जैसे कोई अपने ही अंदर किसी से बात कर रहा। एक एक्टर को ये कला आनी चाहिए कि जब दर्द बहुत गहरा हो तो आवाज का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, आवाज की गहराई बढ़ती है। और अब वो सी जो एक्टिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट है, वो गाना याद है ना, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। इस गाने में मीना जी की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। एक जमींदारनी, एक खानदानी औरत जमीन पर बैठी अपने अपने पति के पैरों को कस कर पकड़ा हुआ है उसने, वो गिड़गड़ा रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, उस गिड़गड़ाने में, इस जमीन पर गिरने में भी एक ग्रेस है। उन्होंने अपनी डिग्निटी खो दी है, लेकिन अपनी शराफत नहीं खोई। वो जोर से रोकर तमाशा नहीं कर रहे, उनके आंसू उनकी बेबसी है, उनकी शिकायत नहीं। एक ही फ्रेम में एक औरत का सबसे ऊंचा गुरूर और उसकी सबसे गहरी कमजोरी, दोनों को एक साथ पर्दे पर जीना, ये सिर्फ मीना कुमारी ही कर सकती थी। तो भाई लोग, मीना कुमारी जी ने हमें सिखाया कि महान अभिनय दिमाग से नहीं होता है, वो आपकी आत्मा के उन कोनों से होता है जिन्हें आप दुनिया से छुपा कर रखते हैं। और अब भाई लोग, आज की मास्टर क्लास का होमवर्क, और यकीन मानिए ये आज तक का सबसे मुश्किल होमवर्क होने वाला है। हम इसे कहेंगे दी सोबर ड्रंक मोनोलॉग, यानी कि होश में नशे का एक अलाप। अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपको कोई एक साधारण सा पैराग्राफ पढ़ना है। मान लीजिए आप किसी को अपनी दिनचर्या बता रहे हैं या रोज आप क्या करते हैं, ये सब बता रहे हैं, लेकिन सबटेक्स्ट ये है कि आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और आप सामने वाले से ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप नशे में हैं। आपको लड़खड़ाना नहीं है, जबान नहीं लड़खड़ाने देनी, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी पलकों के भारीपन से और अपने शब्दों को हद से ज्यादा साफ बोलने की उस एक्स्ट्रा कोशिश से ये जताना है कि आपके अंदर कितना नशा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैमरे पर पकड़ने की कोशिश कीजिए, इसे रिकॉर्ड कीजिए और मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा कि क्या आप अपनी ही आंखों को धोखा दे पाए। आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहें और अपनी कला की इबादत करते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और आइकॉनिक फिल्म के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नहीं,

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तुम्हें बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
2: आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिव योगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ललवाक है। इस ललवाक में ललेश्वरी कहती हैं, मैं पहले कश्मीरी में आपको बताऊंगा, अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, अकुई ओंकार युस्नाय बिदरे, कुंभई ब्रह्मांडस सुंगरे, अक्सुई मंथर सेतस करे, अक्सुई मंथर सेतस करे, तस्सास मंथर क्या करे। लल कहती है जिस ओंकार को किसी ने अपनी नाभि में धारण कर लिया, नाभि मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे कश्मीर योग दर्शन में। नाभि हमारे सात कुंडलनी चक्रों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और जब ओंकार की वो ध्वनि और वाइब्रेशन मेरे नाभि में केंद्रित हो जाती है तो ओम ही एक ब्रिज बन जाता है मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में। हमें उस यूनिवर्सैलिटी का पता लगता है कि मैं अब केवल मैं नहीं हूं, मैं तो इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। तो जब मैं भी वही बन जाता हूं तो फिर वो कहती है ता सास मंथर क्या करे, फिर मुझे रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ पद्धति यज्ञ इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। परंतु ये बड़ा जरूरी है समझना कि एक नर्सरी से लेके पीएचडी वाला मॉडल है, यानी शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी। और जब वो शुरुआत करते हैं और करते करते करते आप अपनी नाभि में उस ओम को धारण कर लेते हैं तो फिर आप उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको इन छोटी मोटी पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि वो इस

फिल्म नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही

उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।

हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफी के बेटू ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी। तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। रफी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। न किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे, ना ही सिगरेट पीते थे। पार्टियों का शौक भी नहीं था, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो एक रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे।

रफ़ी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वह इंसान बड़े थे या कलाकार। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल गढ़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कवाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफ़ी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ है और न कभी होगा।

उत्तर भारत में कोई बारात नागिन डांस के बिना नहीं निकलती, लेकिन ये भी सच है कि बारात में आज मेरे यार की शादी है भी अनिवार्य रूप से गाया जाता है। आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत रफी साहब ने गाया है। उनका एक और गीत जात पात और धर्म का भेद किए बिना बारातों में खूब गाया जाता है। ये गाना दोस्ती की तरफ से नए दुल्हे की शान में कसीदे पढ़ने के अंदाज से गाया जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देशभक्ति के गीत का इस्तेमाल जिसने भी दुल्हे के लिए पहली बार किया था उसे 100 तोपों की सलामी। एक और किस्सा अमिताभ से सुनिए। 2 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन रफी साहब गा चुके थे। दूसरे दिन सुबह हमें पता चला कि आज जिन गायक का प्रोग्राम है वो नहीं आ रहे हैं। रफी साहब एयरपोर्ट जा चुके थे। हम लोगों ने एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाई। प्लेन उड़ने ही वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन करके प्लेन में पहुंचे और रफी साहब को समस्या बताई। रफी साहब बिना कुछ कहे तत्काल हमारे साथ नीचे उतर आए। इस तरह हम परेशानी में फंसने से बच गए। बता दे, रफी साहब को अमिताभ की दीवार बहुत पसंद थी।

उन्होंने हर बड़े संगीतकार के साथ सुर मिलाए, अपने दौर के हर बड़े छोटे कलाकारों के लिए पर्दे के पीछे से आवाज दी। उनकी आवाज में वैरायटी थी, मधुरता थी ही, इसके अलावा उन्हें पार्श्व गायन की तकनीकी गहरी समझ थी। इसी के चलते वो कलाकारों की आवाज के हिसाब से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर लेते थे। उनका गाना सुनने भर से ही पता चल जाता था कि पर्दे पर कौन कलाकार इसे साकार कर रहा है। हीरो की आवाज से आवाज मिलाने में उनका कोई सानी नहीं था। रफी साहब तीसरी मंजिल का गीत ओ हसीना जुल्फों वाली में ड्रम का कमाल है। हम किसी से कम नहीं, मैं चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम में गिटार की रिदम है। रफी को वर्सटाइल सिंगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। पद्मश्री से नवाजे गए मोहम्मद रफी को अनेक बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उनके गानों की लिस्ट देना यहाँ संभव नहीं। उन्होंने 26,000 से ज्यादा गीत गाए हैं, सोलो भी और ड्यूट भी।

मोहम्मद रफी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आई थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। मोहम्मद रफी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर।

बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, उतना ही कम है। उनकी आवाज उनके गानों की तरह ही अमर हो गई। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। और जाने से पहले मोहम्मद रफी की गाई हुई दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का कार्यक्रम आधारित था सदाबहार गायक मोहम्मद रफी साहब पर। प्रस्तुत किया आरजे किरली ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शमी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शमी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शमी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शमी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

गीता वैली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवन

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: Toichu Bozan, Namat Asharya Sifar, Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Hund.
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये महफिल किसी एक दिल की कहानी नहीं, हर सुनने वाले की धड़कन यहाँ मेहमान है। नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। लेके आए हैं हम आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश, जो आप सुनते हैं हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे और पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट RJ किरनी।
1: और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भरत सोफोरी। आज के इस बेहद खास शो आपकी फरमाइश में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों, महफिल सजी है और उम्मीदों के चिराग रोशन है, तो क्यों ना आज के प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत शेर से किया जाए। न दूरियां हैं दिलों में न फासले होंगे, मोहब्बत साथ चलेगी तो सिलसिले होंगे। ये गीतों का सफर तो बस एक बहाना है, मिले जो दिल से दिल तो मंजिल के रास्ते होंगे।
0: वाह, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अक्सर लोग सोचते हैं कि आपकी फरमाइश का मतलब सिर्फ अपना पसंदीदा गाना बजवाना है, लेकिन रेडियो वितस्ता पर हमारा मकसद थोड़ा गहरा है।
1: बिल्कुल सही कहा किरनी। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ संगीत की दुनिया बिखेरना नहीं है, बल्कि दिलों को दिलों से जोड़ना है। ये मंच एक जरिया है आपकी भावनाओं को आपके अपनों तक पहुंचाने का, पुरानी यादों को ताजा करने का और एक दूसरे के करीब आने का।
0: तो तैयार हो जाए अपनी पसंद के गीत और नगमे सुनने के लिए जो पूरे हफ्ते आपने भेजे हैं। आपकी पसंद के गाने बन जाए हमारे इस संगीतमय गुफ्तगू का हिस्सा, क्योंकि संगीत तो हवाओं में है, बस उसे महसूस करने के लिए एक दिल चाहिए।
1: तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फरमाइशी गीतों का ये खूबसूरत सिलसिला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर। तो आज हम आपको सुनाते हैं पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सच्चा झूठा का गीत। गीत के बोल है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा

0: अगली फरमाइश आई है एक ऐसे गीत की जो दिल को चुपके से छू जाता है, और भेजने वाले श्रोता है उषा कौशल अम्बाला कैंट से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म हकीकत का गाना, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी, मनाडे, तलत महमूद और भूपेंद्र सिंह ने, और गाने के बोल है होके मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा। लीजिए पेश है इनकी पसंद।
1: होके मजबूर मुझे उसने।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधु। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर संधु, अवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जब जब फूल खिले से गीत। गीत के बोल है ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश आई है फिल्म बाजीगर के गीत की, जिसके बोल है छुपाना भी नहीं आता। इस गाने को आवाज दी है विनोद राठौड़ ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है हाशिम आरा वेस्ट बंगाल से। भेजने वाले श्रोता है ममता और उनके साथ और सुनने वाले श्रोता है श्री और आदिया। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कर्नल HS कौशल और इनके सभी दोस्त। ये सुनना चाहते हैं फिल्म वापस से गीत। गीत के बोल है एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता है किरण, सुमन, अनीता, शेखर, प्रिया, अमित, राहुल, राजेश और गिनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म द ट्रेन का गाना, जिसके बोल है किस लिए मैंने प्यार किया, और इस गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। डीजे पेश है इन सभी का पसंदीदा गीत।

प्रस्तुत करते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है दिल्ली से, और भेजने वाले श्रोता है डॉली, सुमन, गुड़िया और सुधा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सरगम से गीत। गीत के बोल है डफली वाले डफली बजा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश आई है एक यादगार गीत की जो हर दिल को अपना सा लगता है और भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। ये फरमाइश हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म हीरा का गाना जिसके बोल है मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नहावकर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म एक नजर से गीत। गीत के बोल है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। पीएस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मुरहेकर। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी नगमा।

अगली फरमाइशी गाना है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसके बोल है दिल तो है दिल, और इस गाने को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है विनय मोहन, मीनाक्षी, पनोमा और डॉक्टर ईशानी। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से भेजने वाले श्रोता है रंदील बांगड़ गुरमेजो गौरव प्रवीण युगम वीरेन और मनराज ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ताना से गीत गीत के बोल है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा फरमाइशी गीत

अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत से, हरियाणवी गीत या पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है केवल पुरानी हिंदी फिल्म का गीत की फरमाइश ही भेजें। और फरमाइश भेजने के लिए नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता है आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शराफत से गीत। गीत के बोल है शराफत छोड़ दी मैंने। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश भेजी है अनिल ने अम्बाला कैंट से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म परवरिश का गाना, जिसके बोल है हम प्रेमी प्रेम करना जाने, और इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है ये गीत।

0: लेते हैं आज के कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म आशिकी का गीत। गीत के बोल है, दिल का आलम में क्या बताऊं तुम्हें। इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू ने। निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। ये कह रहे हैं कि लाजवाब प्रस्तुति है आपके इस कार्यक्रम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी श्रोताओं से हम एक अनुरोध करते हैं, हमारे लाइब्रेरी में नए गाने नहीं है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली फरमाइश आप पुराने हिंदी फिल्म गीतों की फरमाइश हमें भेजेंगे। इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं।
1: ये महफिल यही ठहर जाए तो बेहतर है, कुछ एहसास दिल में उतर जाए तो बेहतर है। गीत तो खत्म हो जाते हैं अक्सर, अगर उनकी गूंज साथ रह जाए तो बेहतर है। अब इजाजत दीजिए इस महफिल से प्यार के साथ, ये लम्हे रहेंगे आपके दिल के पास, फिर मिलेंगे इसी जज्बात इसी एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आप लुत्फ उठाइए इस मनमोहक गीत का। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेट A++, CGPA 3.72,
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स,
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
6: ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੋ।
5: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
6: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
5: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮੈਨੂੰ 90.0 ਮੇ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
3: सही रास्ता, सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: सुनिए और सुनाइए, रेडियो वितस्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर

0: से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: नफरत

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जाने किस सितमगर ने ख्वाबों का घरौंदा राख किया। शायकी ने गजल की महफिल में हमारा खलूस भरा आदाब।

ताबद जलते रहें गरिये इंतजार के चिराग, ताबद जलते रहेंगे हम भी इनके साथ साथ।

बहार गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे न होंगे। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे न होंगे।

आवाज भी न दो, मैं जिंदगी की हसरतों के आसपास हूं। ऐसा नहीं कि उससे मैं नाराज हूं बहुत, वो मुझसे दूर ही सही, मैं उसके पास हूं।

कुछ भी देखता हूं, पर वो बात कहां जब हम तुम आईने में बहुत करीब होते थे। सामीन, बहार गजल की इस महफिल से अब चाहेंगे हम रुखसत। रुखसत।

आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:58। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के सभी श्रोताओं का मैं प्यार भरा नमस्कार भेजता हूं, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। आज के इस विशेष प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय के साथ सुइयां आगे बढ़ रही है, और अब वक्त हो चला है आज के इस सफर को यहीं विराम देने का। लेकिन विदा लेने से पहले, आज का दिन बेहद खास है और साथ में कल का भी, क्योंकि कल साहित्य और कला के उस सूर्य को याद कर रहे हैं जिनकी रोशनी से पूरी दुनिया जगमगा रही है। मैं बात कर रहा हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। साहित्य के महानायक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, कल रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती है। टैगोर केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वो एक दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और शिक्षा विद्वान भी थे। उनकी उपलब्धियों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि शब्द कम पड़ जाए। कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्व प्रसिद्ध सम्मान गुरुदेव साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। यह सम्मान उन्हें उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए मिला था। दूसरा, राष्ट्रगान के रचयिता। वे दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार शोनार बांग्ला। शिक्षा का मंदिर, उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां प्रकृति की गोद में शिक्षा देने की अनूठी परंपरा शुरू हुई। साहित्यिक योगदान, गोरा, घरे भाईरे और काबुलीवाला जैसे उनकी कहानियां आज भी मानव संवेदनाओं की सबसे बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। कला की जीवंत प्रस्तुति, वह थिएटर ग्रुप अंबाला। टैगोर की विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम अंबाला की वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी ने हमेशा किया है, जो इस सामुदायिक रेडियो को चलाती है। कुछ समय पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर के कविताओं पर आधारित नाटक काबुलीवाला का 2 बार मंचन किया, जो रचनाओं पर आधारित है, और उसको एक नाटकीय रूप देने के बाद इसके 2 सफल मंचन किए गए, अंबाला में और शिमला में। एक छोटी बच्चे और काबुलीवाले की निस्वार्थ दोस्ती और पिता के प्रेम को दर्शाती इस नाटक ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।

हालांकि इन कलाकारों ने टैगोर के शब्दों को मंच पर जीवंत कर दिया, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी के सभी कलाकार। श्रोताओं, गुरुदेव कहते थे कि प्यार ही एकमात्र ऐसी वास्तविकता है, यह केवल भावना नहीं है, यह एक सत्य है जो सृजन के हृदय में स्थित है। इसी सत्य और प्रेम के साथ अब मैं भारत सोपोरी आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। लेकिन हर दिन की तरह आपके लिए कुछ पंक्तियां लाया हूं जो आपके लिए हमेशा हमेशा आपके लिए है। पंक्तियां यूं हैं, उनकी लेखनी ने हर दिल में एक नई आस जगाई है, उनकी लेखनी ने हर दिल में एक नई आस जगाई है, साहित्य के आंगन में उन्होंने सुनहरी सुबह सजाई है। शब्द मौन हो जाते हैं जब उनका जिक्र आता है, शब्द मौन हो जाते हैं जब उनका जिक्र आता है। टैगोर वो खुशबू है जो रूह को महका जाती है, टैगोर वो खुशबू है जो रूह को महका जाती है। तो ये था आज का समापन, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 9 मई 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत 5:58 पर वंदे मातरम से होगी, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम सुनहरे पल साहिर लुधियानवी के ऊपर कार्यक्रम तैयार किया गया। 8:30 बजे किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 13, और शीर्षक होगा कारण भी हम निवारण भी हम। 9:30 बजे रेट्रो हिट्स और 10:15 पर काव्य गोष्ठी एपिसोड 8, हमारे साथ होंगी इंदु शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी और आप सुनेंगे कृषि समाचार। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, 7 बजे सुनहरे पल एपिसोड 7, और ये कार्यक्रम यशोदास पर तैयार किया गया है, आप सुन पाएंगे आरजे किरनी के आवाज में। 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देंगे, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।